0: जान रंग जी खड़का बादल तेरे रब संग जी खड़का बादल तेरे रब संग जी
1: दे नाल जदों बिट्टू रहूगा।

दान विसाह दान पुरुषा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहब जी दे इशनान चौंकियां झंडे बुंगे जुगहो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाहेगुरु।

सखिया मू कही ना जेहिया यार वे हेकडू हेक चाड़े हो किस चितेहिया हेक दू हेक चाड़े अनिक प्यारे नित कर दे भोग बिलासा तिना देख मन चाओ उठंदा

असगाहु। नानक भगता सदा विगास, सुने दुख पाप का नास। मने की गत कही न जाए, जेको कहे पिछे पछुताए। कागद कलम ना लिखण हार, मने का बह करन विचार। ऐसा नाम निरंजन हुए, जेको मन जाने मन कोए। मन सुरत होवे मन बुद्ध, मन सगल भवन की सुध। मन मुह चोटा ना खाए, मन जमकै साथ ना जाए। ऐसा नाम निरंजन हुए, जेको मन जाने मन कोए। मन मार्ग ठाक ना पाए, मन पत स्यो प्रगट जाए। मन मग ना चलै पंथ, मन धर्म सेती संबंध।

नानक भव है न भिख, ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए। पंच प्रवान पंच प्रधान, पंचे सो है दार राजान, पंचा का गुरेक ध्यान, जे को

स्नानं नमो मंत्र मंत्रं नमो जंत्र जंत्रं नमो इष्टेष्टे नमो तंत्र तंत्रं सदा सच्चिदानंद सर्वं परणास्ति अनूपे अरूपे समस्तुल्यवास्ति सदा सिद्धाबुद्धाबृत कर्ता अधो ऊर्ध अर्धं अगं ओघहर्ता परं परम परमेश्वरं प्रोचपालं सदा सर्वदा सिद्धदाता दयालं अचेदी अपे दिया नामं अकामं समस्तो पराजी समस्तस्ततामं तेरा जोर चाचरी छंद जले हैं थले हैं अपीत हैं अपे हैं प्रभु हैं अजू हैं देश हैं पे हैं पुजंग प्रयात छंद अगाधे अबाधे आनंदी स्वरूपे नमो सर्वमान्य समस्ती निदाने नमस्त्वंग निरनाथे नमस्त्वंग परमाथे नमस्त्वंग अगंजे नमस्त्वंग अपंजे नमस्त्वंग अकाले नमस्त्वंग अपाले नमो सर्व देशे नमो सर्व पेशे नमो राज राजे नमो साज साजे नमो साह साहे नमो माह माहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोख रोखे नमो सोख सोखे नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे नमो सर्व जीतं नमो सर्व पीतं नमो सर्व ज्ञानं नमो परमतानं नमो सर्व मंत्रं नमो सर्व जंत्रं नमो सर्व दृश्यं नमो सर्व कृष्णं नमो सर्वरंगे त्रिभंगी अनंगे नमो जीव जीवं नमो बीज बीजे अखिजे अपिजे समस्तं प्रसिज्जे कृपालं स्वरूपे को कर्मं परणासी सदा सर्वदा रिद्ध सिद्धि निवासी चारपट छांद त्वा प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे अखल जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अखल धर्मं अलख कर्मं सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग पाने सर्वंग माने सर्वंग प्राणं सर्वंग त्राणं सर्वंग भुगता सर्वंग जुगता

मुलख राज है, निरुक्त स्वरूप है, त्रिमुक्त विभूत है, प्रपुक्त प्रवाह है, सुयुक्त सुधा है, सदैवं स्वरूप है, अपेदीयनूप है, समस्तो पराज है, सदा सर्वसाज है, समस्तुल सलाम है, सदैव अलकाम है, निर्बाध स्वरूप है, अगाध है, अनूप है, ओअंगाद रूपे अनाद स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे त्रिवर्गं त्रिवाद्य अगंजे अगाध्य सुपंग सर्वभागे सुसर्वा अनुराग त्रिपुक्त स्वरूप है, शिज है, शूत है, किनर्कं प्रणास है, पृथ्वील प्रवास है, निरुक्त प्रभा है, सदैवं सदा है, विपुक्त स्वरूप है, प्रयुक्त अनूप है, निरुक्त सदा है, विपुक्त प्रभा है, अनुक्त स्वरूप है, प्रयुक्त अनूप है, चाचरी छंद अपंग है, नंग है, अपेख है, लेख है, परम है, कर्म है, अनाद है, जुगाद है, अजय है, वय है, पूत है, तूत है, नाश है, उदास है, तंत है, बंध है, अपक्त है, विरक्त है, अनास है, प्रकाश है, निचिंत है, सुनिंत है, अलेख है, अदेख है, अलेख है, अपेख है, अटाह है, अगाह है, असंभ है, गंभ है, अनिल है, अनाद है, अनित है, सुनित है, अजात है, अजाद है, चरपट छंद त्व प्रसाद सर्वं हंता सर्वं गंता सर्वं ख्याता सर्वं ज्ञाता सर्वं हर्ता सर्वं कर्ता सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं कर्मं सर्वं धर्मं सर्वं जुगता सर्वं मुक्ता रसावल छंद त्व प्रसाद नमो नरक नासे सदैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं विपूते परमात्म परमाते सदा सर्व साथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे निरपंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पुत्र न पुत्र न सत्र न मित्र न तात न मात न जात न पात निरसाकं श्रीख है मितो मीख है सदैवं प्रभा है अजय है अजा है भगवती छंद त्व प्रसाद के जाहर जहूर है के हाजर हजूर है हमेशुल सलाम है समस्तुल कलाम है के साहिब दिमाग है के हुसनल चिराग है के कामल करीम है के राज करहीम है के कर्म के रोजी दहंद है के राज करहंद है करीमुल कमाल है के हुसनल जमाल है गनीमुल खराज है गरीबुल नवाज है हरीफुल सिकन है हरासुल फकन है कलंकं प्रणास है समस्तुल निवास है अगंजुल गनीम है रजाए करहीम है समस्तुल जुबा है के साहिब किरा है के नरकं प्रणास है बहस्तुल निवास है के सर्वुल गुवन है हमेशुल रवन है तमामुल तुमीज है समस्तुल अजीज है परं परम ईस है समस्तुल अदीस है अदेशुल अलेख है हमेशुल अपेख है जमीनुल जमा है अमीकुल इमा है के जुरत जमाल है के अचलंग प्रकाश है के मितो सुभाष है के अजब स्वरूप है के मितो विभूत है के अमितो पसा है के आत्म प्रभा है के अचलंग अनंग है के मितो अपंग है मदपार छंद त्व प्रसाद मुन मन प्रणाम गुणगन मुदाम अरबर अगंज हर नर प्रपंज अनगन प्रणाम मुन मन सलाम हर नर अखंड बर नर अमंड अनुभव अनास मुन मन प्रकाश गुणगन प्रणाम जल थल मुदाम अनछिज अंग आसन अपंग उपमा अपार गतमित उदार जल थल अमंड दिस विस अपंड जल थल महंत दिस विस बेअंत अनुभव अनास त्रित धर तुरास आजान बाहु एक सदाहु ओंकार आद कथनी अनाद खलखंड ख्याल गुरबर अकाल कर कर प्रणाम चित चरण नाम अनछिज गात आज जिना बात अनचंज गात अनरंज बात अनटुट पंडार अनठट अपार अडीठ धर्म अत टीठ कर्म अनवरण अनंत दाता महंत हर बोल मना छंद त्व प्रसाद करुणालया है अरकालया है खलखंडन है महमंडन है जगतेश्वर है परमेश्वर है गल काल कारण है सर्व उबारण है त्रित के तरण है जग के करण है मन मान्या है जग जान्या है सर्वं पर है सर्वं कर है सर्व पास्या है सर्वनास्या है करुणाकर है विश्वंबर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मांड से खलखंड से परते पर है करुणाकर है अजपा जप है अथप्पा थप है अकृताकृत है अमृतामृत है अमृतामृत है करुणाकृत है अकृताकृत है तरणी तृत है अमतेश्वर है परमेश्वर है अकृताकृत है अमृतामृत है अजबाकृत है अमृतामृत है नरनायक है खालकायक है विश्वंबर है करुणालय है नृपनायक है सर्वपायक है पव पंजन है अरगंजन है रिपतापन है जप जापन है अकलंकृत है सर्वाकृत है कर्ता कर है हरता हर है परमात्म है सर्वात्म है आत्म बस है जस के जस है
ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਯਾਤ ਛੰਦ ਨਮੋ ਸੂਰਜ ਸੂਰਜੇ ਨਮੋ ਚੰਦਰ ਚੰਦਰੇ ਨਮੋ ਰਾਜ ਰਾਜੇ ਨਮੋ ਇੰਦਰ ਇੰਦਰੇ ਨਮੋ ਅੰਧਕਾਰੇ ਨਮੋ ਤੇਜ ਤੇਜੇ ਨਮੋ ਬ੍ਰਿੰਦ ਬ੍ਰਿੰਦੇ ਨਮੋ ਬੀਜ ਬੀਜੇ ਨਮੋ ਰਾਜ ਸੰਗ ਤਾਮ ਸੰਘ ਸ਼ਾਂਤ ਰੂਪੇ ਨਮੋ ਪਰਮ ਤਤੰਗ ਅਤੰਗ ਸਰੂਪੇ ਨਮੋ ਯੋਗ ਯੋਗੇ ਨਮੋ ਗਿਆਨ ਗਿਆਨੇ ਨਮੋ ਮੰਤਰ ਮੰਤਰੇ ਨਮੋ ਧਿਆਨ ਧਿਆਨੇ ਨਮੋ ਜੁੱਧ ਜੁੱਧੇ ਨਮੋ ਗਿਆਨ ਗਿਆਨੇ ਨਮੋ ਭੋਜ ਭੋਜੇ ਨਮੋ ਪਾਨ ਪਾਨੇ ਨਮੋ ਕਲਹ ਕਰਤਾ ਨਮੋ ਸ਼ਾਂਤ ਰੂਪੇ ਨਮੋ ਇੰਦਰ ਇੰਦਰੇ ਅਨਾਦੰਗ ਵਿਭੂਤੇ ਕਲੰਕਾਰ ਰੂਪੇ ਅਲੰਕਾਰ ਅਲੰਕੇ ਨਮੋ ਆਸ ਆਸੇ ਨਮੋ ਬਾਂਕ ਬਾਂਕੇ ਅਭੰਗੀ ਸਰੂਪੇ ਅਨੰਗੀ ਨਾਮੇ ਤ੍ਰਭੰਗੀ ਤ੍ਰਕਾਲੇ ਅਨੰਗੀ ਅਕਾਮੇ ਇਕ ਸ਼੍ਰੀ ਛੰਦ ਅਜੈ ਅਲੈ ਭੈ ਬੈ ਭੂ ਅਜੂ ਅਨਾਸ ਅਕਾਸ ਗੰਜ ਭੰਜ ਲਖ ਪਖ ਕਾਲ ਦਿਆਲ ਲੇਖ ਭੇਖ ਅਨਾਮ ਕਾਮ ਅਗਾਹ ਅਟਾਹ ਅਨਾਥੇ ਪਰਮਾਥੇ ਅਜੋਨੀ ਅਮੋਨੀ ਨ ਰਾਗੇ ਨ ਰੰਗੇ ਨ ਰੂਪੇ ਨ ਰੇਖੇ ਅਕਰਮੰ ਅਪਰਮੰ ਅਗੰਜੇ ਅਲੇਖੇ ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਯਾਤ ਛੰਦ ਨਮਸਤੁਲ ਪ੍ਰਣਾਮੇ ਸਮਸਤੁਲ ਪ੍ਰਣਾਸੇ ਅਗੰਜੁਲ ਅਨਾਮੇ ਸਮਸਤੁਲ ਨਿਵਾਸੇ ਨਿਰਕਾਮੰ ਵਿਭੂਤੇ ਸਮਸਤੁਲ ਸਰੂਪੇ ਕੁਕਰਮੰ ਪ੍ਰਣਾਸੀ ਸੁਧਰਮੰ ਵਿਭੂਤੇ ਸਦਾ ਸਚਦਾਨੰਦ ਸਤਰੰਗ ਪ੍ਰਣਾਸੀ ਕਰੀਮੁਲ ਕੁਨਿੰਦਾ ਸਮਸਤੁਲ ਨਿਵਾਸੀ ਅਜਾਇਬ ਵਿਭੂਤੇ ਗਜਾਇਬ ਗਨੀਮੇ ਹਰੀਅੰ ਕਰੀਅੰ ਕਰੀਮੁਲ ਰਹੀਮੇ ਚਤਰ ਚਕਰਵਰਤੀ ਚਤਰ ਚਕਰ ਭੁਗਤੇ ਸਵਯੰਭਵ ਸੁਭੰ ਸਰਵਦਾ ਸਰਵਜੁਗਤੇ ਦੁਕਾਲੰ ਪ੍ਰਣਾਸੀ ਦਿਆਲੰ ਸਰੂਪੇ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ ਅਭੰਗੰ ਵਿਭੂਤੇ ਦੁਕਾਲੰ ਪ੍ਰਣਾਸੀ ਦਿਆਲੰ ਸਰੂਪੇ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ ਅਭੰਗੰ ਵਿਭੂਤੇ ਏਕੋ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਤੁਆ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਵਈਏ ਸਰਾਵਗ ਸੁਧ ਸਮੂਹ ਸਿਧਾਨ ਕੇ ਦੇਖ ਫਿਰਿਓ ਕਰ ਜੋਗ ਜਤੀ ਕੇ ਸੂਰ ਸੁਰਾਰਦਨ ਸੁਧ ਸੁਧਾ ਦਿਖ ਸੰਤ ਸਮੂਹ ਅਨੇਕ ਮਤੀ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਸ ਕੋ ਦੇਖ ਰਹਿਓ ਮਤ ਕੋ ਨ ਦੇਖੀ ਤੁ ਪ੍ਰਾਨ ਪਤੀ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਕੀ ਭਾਏ ਕਿਰਪਾ ਹੂੰ ਤੇ ਏਕ ਰਤੀ ਬਿਨ ਏਕ ਰਤੀ ਕੇ ਮਤੇ ਮਤੰਗ ਜਰੇ ਜਰ ਸੰਗ ਅਨੂਪੋ ਤੰਗ ਸੁਰੰਗ ਸਵਾਰੇ ਕੋਟ ਤੁਰੰਗ ਕੁਰੰਗ ਸੇ ਕੂਦਤ ਪੌਨ ਕੇ ਗੌਨ ਕੋ ਜਾਤ ਨਿਵਾਰੇ ਭਾਰੀ ਭੁਜਾਨ ਕੇ ਭੂਪ ਭਲੀ ਵਿਦ ਨਿਆਵਤ ਸੀਸ ਨ ਜਾਤ ਵਿਚਾਰੇ ਏਤੇ ਭਏ ਤੋ ਕਾਂ ਭਏ ਭੂਪਤ ਅੰਤ ਕੋ ਨਾਂਗੇ ਹੀ ਪਾਏ ਪਧਾਰੇ ਜੀਤ ਫਿਰੈ ਸਭ ਦੇਸ ਦਿਸਾਨ ਕੋ ਬਾਜਤ ਢੋਲ ਮਰਦੰਗ ਨਿਗਾਰੇ ਗੁੰਜਤ ਗੂੜ ਗਜਾਨ ਕੇ ਸੁੰਦਰ ਹਿੰਸਤ ਹੀ ਹੈ ਰਾਜ ਹਜ਼ਾਰੇ ਭੂਤ ਭਵਿੱਖ ਭਵਾਨ ਕੇ ਭੂਪਤ ਕੌਣ ਗਰੈ ਨਹੀਂ ਜਾਤ ਵਿਚਾਰੇ ਸ੍ਰੀ ਪਤ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਭਜੇ ਬਿਨ ਅੰਤ ਕੋ ਅੰਤ ਕੇ ਧਾਮ ਸਿਧਾਰੇ ਤੀਰਥ ਨਾਨ ਦਯਾਦਮ ਦਾਨ ਸੋ ਸੰਜਮ ਨੇਮ ਅਨੇਕ ਵਿਸੇਖੈ ਵੇਦ ਪੁਰਾਨ ਕਤੇਬ ਕੁਰਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਮਾਨ ਸਬਾਨ ਕੇ ਪੇਖੈ ਪੌਣ ਅਹਾਰ ਜਤੀ ਜਤ ਧਾਰ ਸਭੈ ਸੋ ਵਿਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕ ਦੇਖੈ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਭਜੇ ਬਿਨ ਭੂਪਤ ਏਕ ਰਤੀ ਬਿਨ ਏਕ ਨ ਲੇਖੈ ਸੁਧ ਸਿਪਾਹ ਦੁਰੰਤ ਦੁਬਾਹ ਸੋ ਸਾਜ ਸਨਾਹ ਦੁਰਜਾਨ ਦਲੈਂਗੇ ਭਾਰੀ ਗੁਮਾਨ ਭਰੇ ਮਨ ਮੈਂ ਕਰ ਪਰਬਤ ਪੰਖ ਹਲੇ ਨਾ ਹਲੈਂਗੇ ਤੋਰ ਅਰੀਨ ਮਰੋਰ ਮਵਾਸਨ ਮਾਤੇ ਮਤੰਗਨ ਮਾਨਵ ਲੈਂਗੇ ਸ੍ਰੀ ਪਤ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਕਿਰਪਾ ਬਿਨ ਤਿਆਗ ਜਹਾਨ ਨਿਦਾਨ ਚਲੈਂਗੇ ਵੀਰ ਅਪਾਰ ਵੱਡੇ ਬਰਿਆਰ ਵਿਚਾਰੈ ਸਾਰ ਕੀ ਧਾਰ ਪਛਈਆ ਤੋਰਤ ਦੇਸ ਮਲਿੰਦ ਮਵਾਸਨ ਮਾਤੇ ਗਜਾਨ ਕੇ ਮਾਨ ਮਲਈਆ ਗਾੜੇ ਗੜਾਨ ਕੇ ਤੋੜਨ ਹਾਰ ਸੋ ਬਤਨੀ ਚਕਚਾਰ ਲਵਈਆ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਸਭ ਕੋ ਸਰਨਾਇਕ ਜਾਚਕ ਅਨੇਕ ਸੋ ਏਕ ਦਵਈਆ ਦਾਨਵ ਦੇਵ ਫਨਿੰਦ ਨਿਸਾਚਰ ਭੂਤ ਭਵਿੱਖ ਭਵਾਨ ਜਪੈਂਗੇ ਜੀਵ ਜਿਤੇ ਜਲ ਮੈਂ ਥਲ ਮੈਂ ਪਲ ਹੀ ਪਲ ਮੈਂ ਸਭ ਥਾਪ ਥਪੈਂਗੇ ਪੁੰਨ ਪ੍ਰਤਾਪਨ ਬਾਟ ਜੈਤ ਧੁਨ ਪਾਪਨ ਕੇ ਬਹੁ ਪੁੰਜ ਖਪੈਂਗੇ ਸਾਧ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਸੰਨ ਫਿਰੈ ਜਗ ਸੱਤਰ ਸਭੈ ਅਵਲੋਕ ਚਪੈਂਗੇ ਮਾਨਵ ਇੰਦਰ ਗਜਿੰਦਰ ਨਰਾਦ ਪਜੌਨ ਤ੍ਰਿਲੋਕ ਕੋ ਰਾਜ ਕਰੈਂਗੇ ਕੋਟ ਇਸਨਾਨ ਗਜਾਦ ਕਦਾਨ ਅਨੇਕ ਸੁਅੰਬਰ ਸਾਜ ਭਰੈਂਗੇ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹੇਸ਼ਰ ਵਿਸ਼ਨ ਸੱਚੀ ਪਤ ਅੰਤ ਫਸੇ ਜਮ ਫਾਸ ਭਰੈਂਗੇ ਜੇ ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਪਤ ਕੇ ਪ੍ਰਾਸੈ ਪਗ ਤੇ ਨਰ ਫਿਰ ਨਾ ਦੇਹ ਧਰੈਂਗੇ ਕਹਾ ਭਇਓ ਜੋਦੋ ਲੋਚਨ ਮੂੰਦ ਕੈ ਬੈਠ ਰਹਿਓ ਬਕ ਧਿਆਨ ਲਗਾਇਓ ਨਹਾਤ ਫਿਰਿਓ ਲੀਏ ਸਾਤ ਸਮੁੰਦਰਨ ਲੋਕ ਗਇਓ ਪਰਲੋਕ ਗਵਾਇਓ ਬਾਸ ਕੀਓ ਬਖਿਆਨ ਸੋ ਬੈਠ ਕੇ ਐਸੇ ਹੀ ਐਸੇ ਸੋ ਬੈਸ ਬਿਤਾਇਓ ਸਾਚ ਕਹੋ ਸੁਣ ਲਿਹੋ ਸਭੈ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ ਕਾਹੂ ਲੈ ਪਾਹਨ ਪੂਜ ਧਰਿਓ ਸਿਰ ਕਾਹੂ ਲੈ ਲਿੰਗ ਗਰੇ ਲਟਕਾਇਓ
काहू लख्यो हर अवाची दिशा में, काहू पछाह को शीश निवायो, को भूतान को पूजत है पास, को मृतान को पूजनतायो, कूर क्रिया और जो सब ही जग, श्री भगवान को भेद ना पायो, को भूतान को पूजत है पास, को मृतान को पूजनतायो, कूर क्रिया और जो सब ही जग, श्री भगवान को भेद ना पायो। एको ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कव्यो बाच बेनती चौपई, हमरी करो हाथ दै रक्षा, पूर्ण होए चित की इच्छा, तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतपारा, हमरे दुष्ट सब तुम कावहो, आप हाथ दै मोहे बचावहो, सुखी बसे मोरो परिवारा, सेवक सिख्य सब करतारा, मोर अच्छा निज कर दै करिए, सब बैरन को आज संगरिए, पूर्ण होए हमारी आसा, तोर भजन की रह प्यासा, तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याऊं, जो बर चाहो सो तुम ते पाऊं, सेवक सिख हमारे तारी है, चुन चुन सत्र हमारे मारी है, आप हाथ दे मुझे उबरी है, मरण काल का त्रास निवरी है, हुजो सदा हमारे पछा, श्री हस्तो जुजू करियो रक्षा, राख लो मोहे राखन हारे, साहिब संत सहाय प्यारे, दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर दास कंता, काल पाए ब्रह्मा बपतरा, काल पाए शिवजू अवतरा, काल पाए कर विष्ण प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा, जवन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जू थियो, जवन काल सब लोग सुवारा, नमस्कार है ताहे हमारा, जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जच्छन उपजायो, आद अंते कै अवतारा, सोई गुरु समझी अहो हमारा, नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जने आप सवारी, सिवकन को सब गुण सुख दियो, सत्रन को पल मो बद कियो, काट काट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत, चीटी ते कुंचर असथूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला, संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पछाने, घट घट के पट पट की जाने, जब उदकर्ख करा करतारा, प्रजा धरत तब देह अपारा, जब आकर्ख करत हो कबहू, तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ, जेते भजन श्रेष्ठ सब तारै, आप अपनी बूझ उचारै, तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत भेद भेद अरे आलम, निरंकार निर्विकार निर्लंब, आद अनिल अनाद असंभ, ताका मूढ़ उचारत भेदा, जाको भेव न पावत वेदा, ताको कृपाहन अनुमानत, महामूड कछ भेद ना जानत, महादेव को कहत सदा शिव, निरंकार का चीनत न पेव, आप अपनी बुध है जेती, वर्णत भिन्न भिन्न तुह तेती, तुमरा लखा न जाए पसारा, किह विद सजा प्रथम संसारा, एक रूप अनूप स्वरूपा, रंक पयो राव कही पूपा, अंडज जेरज सेत जखीनी, उत्पुज खान बौहर राच दीनी, कहूं फूल राजा हुआ बैठा, कहूं सिमट भयो शंकर इकैठा, सग सिगरी सृष्ट दिखाए अचंभव, आद जुगाद स्वरूप स्वयंभव, अब रचा मेरी तुम करो, सिख्य उबार असिख्य संगरो, दुष्ट जिते उठवा तुत पाता, सकल मलेच करो रण काता, जे आस तो जितब सरनी परे, तिनके दुष्ट दुखित हुआ मरे, पुरख जबन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे, जो कल को एक बार त्यय है, ताके काल निकट नह है, रचा हुए तहे सब काला, दुष्ट रिष्ट टरे तत्काला, कृपा दृष्ट तन जाहे निहर हो, ताके ताप तनक मह हर हो, रिद सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट छा छुआ सके।

गृह मंदिर बनिया। हर गाओ मंगल नित सखिए, सोग दुख ना व्यापे। गुर चरण लागे दिन सुभागे, अपना पिर जापे। अनहत बाणी गुरु

सो कहो टल गुर सेविया अहनिस सहज सुपाए दर्शन परसे है गुरु कै जन्म मरण दुख जाए होवे सिफत खसम दी नूर अर्शों कुरसों झटी है तुद डिठे सच्चे पातशाह

संत सुन यार हमारे सज्जन एक करो बेनंतिया तिस मोहन लाल प्यारे हो फिरो खोजंतिया।

प्रभ स्यों मन लीना ज्यों जल मीना चात्रिक जिवैत संतिया जन नानक गुर पूरा पाया सगली तिखा बुझंतिया।

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवी प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याहे फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास होए सहाय अर्जन हर गोबिंद नो सिमराओ श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई जिस डिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिय कर नौ निद आवै ताए सब थाई होए सहाय दसवे पातशाह धन सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज सब थाई होए सहाय दसाही पातशाहियां दे प्रतख स्वरूप जुगो जुग अटल धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जियां दे पाठ दर्शन दीदार जी का त्यांतर के बोलो जी पांच प्यारे चार साहिब जादे चाली मुक्ते।

की फतेह। परम सत्कार योग गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी, वड्डियां पागां वाले हो हजूर दे पावन पवित्र चरणा कमला पास बैठ के गुरबाणी पढ़ सुन के मनुखा जन्म नू सवार रहे हो। धन्नवादी हाँ ज्ञानी हरविंदर सिंह जी गंगानगर वालियां दे, जो लड़ीवार पावन गुरबाणी दी कथा विचार आप जी नू सरवण करवा रहे सन। आओ अगले समय वास्ते बेनती करा भाई हरपाल सिंह जी हजूरी रागी सचखंड श्री हरिमंदर साहिब श्री अमृतसर साहिब आप जी नू गुरबाणी कीर्तन सरवण करवाणगे। आप संगतां दे चरणां विच बेनती है कल 28 तरीक एतवार शाम 5 बजे तो 7 बजे तक दा बच्चियां दे समर गुरमत कैंप दा समा होवेगा। उस तो बाद फिर परसों सोमवार तो लैके वीरवार तक इस समर कैंप दा समा सवेरे 6:30 बजे तो लैके शाम नूं 6 बजे तक दा होया करेगा। स्वाप संगतां दे चरणां विच बेनती है आप जीआं ने अपने बच्चियां नूं परिवारां समेत इन इस गुरमत कैंप दे विच लैके हाजिर होना तां कि आउण वाली साडी जनरेशन नूं आउण वाले भविख नूं गुरमत गुर शब्द गुर इतिहास की सोझी समत प्राप्त हो सके। गुरु घर वालों वड्डे पद्धर ते हर साल समर अते विंटर दे विच ए दो कैंप बच्चियां दे विशेष करके कीते जांदे ने। स्वाप जी दे चरणां विच बेनती है आप जी ने जरूर इस कैंप दे विच परिवारां बच्चियां समेत हाजरियां भरनियां ने हिस्सा लैणा है। कल शाम तो इस कैंप की प्रारंभता हो रही है। 2 जुलाई तक यह कैंप निरंतर बच्चियां दा इसी तरह चलेगा। फिर 4 जुलाई दिन शनिवार सवेरे 7 बजे गुरु घर दे गैलरी हॉल विच अमृत संचार हो रहा है। अमृत अभिलाखी माई भाई अपने नाम गुरु घर दी लाइब्रेरी विच दर्ज करवा के ककार प्राप्त करो। धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज जीआं दे पुत्तर तीआं बणीए नगुरे पुणे दी जूठ नूं लाईए। 6 जुलाई तो लैके 16 अगस्त तक श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे संपूर्ण पाठ बोध समागम आयोजित कीते गए ने। स्वाप संगतां दे चरणां विच बेनती है पाठ बोध समागमां वास्ते 10 साल दी उम्र तो लैके बुजुर्गां तक कोई भी इस समागम दा हिस्सा बन सकदा है। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र बाणी दा शुद्ध उचारण सिख के गुरबाणी पढ़न दी सच्चे पातशाह पासो दात मंगीए, अपने जन्म नूं सवारीए, जीवन नूं सफल बनाईए। सो इह सारियां आप जी दे चरणां विच बेनतियां ने। आउण वाले सारे समागमां विच आप जी ने वध चढ़ के हाजरियां भरनियां। आओ गुरु सवारियां पासो गुरबाणी कीर्तन सरवण करते हाँ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

तुम दाते ठाकुर प्रतपालक नायक खसम हमारे निमख निमक तुम ही प्रतपालो हम बारिक तुमरे तारे तुम दाते ठाकुर प्रतपालक नायक खसम हमारे

बेशमार बेअंत स्वामी तेरो अंत ना किन्हीं लहिया रहाऊ, कोट पराध हमारे खंडो अनक विधि समझावो। हम अज्ञान अल्प मत थोरी तुम आपन बिरद रखावो। तुम्हरी शरण तुम्हारी आसा तुम ही सज्जन सुहेले, राखो राखनहार दयाला नानक घर के गोले। तुम्हरी शरण तुम्हारी आसा तुम ही सज्जन सुहेले।

हर आत्म राम पसारिया स्वामी सर्ब रहया पर पूरे अंतर बाहर हर प्रभ एको मिल हर जन मंगल गाए जन नानक दूजी लाभ चलाई अनहद शब्द बजाए जन नानक दूजी लाभ चलाई।

मन सहज भया हर पाया बलराम जीओ गुरमुख मिलया सुभाई हर मन तन मीठा लाया बलराम जीओ हर मीठा लाया मेरे प्रभ पहाया अन दिन हर ले वलाई मन चिंदिया फल पाया स्वामी हर नाम वजी वादहाई हर प्रभ ठाकुर काज रचाया तन हिरदह नाम विगासी जन

आनंद विनोद सुख सहज बेहात है, लालच लुभाए रस लुभत नाना पतंग, बुझत ही अंधकार भय अकुलात है।

सबको मिल बोचे, उच शब्द मेले राज करेगा खालसा। आकी रह न कोए, ख्वार होए सब मिलेंगे बचे शरण।

अहनस सहज दर्शन परसया जन्म मरण होवे सिफत नूर अर्थ हो तुद डिठे सच्चे मल जन्म जन्म दी सज्जन सच्चा सिर साहांद जिस पास बैठे आ सबना दा जिस पास बैठे आ